नाम गणपति गणेश लंबोदर सो है भुजाचार इक दंत चंद्रमा ललाट राज ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे ध्रुपद गावे अति विचित्र गणनाथ आज